लैंगिक हिंसा विरुद्ध को 16 दिनी अभियान 25 नोभेम्बर देखि 10 डिसेम्बर 2025 प्रविधि को सही प्रयोग गरौं लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौं।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीव।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 7 बज्यो।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
2: इट्स 3 p.m.

महासिंह का गांव पालिका को अनुरोध नया निजी तथा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्नु अघि अनिवार्य रूप में गाउँपालिका को कार्यालय में गई नक्सा पास गरौं। भवन मापदंड को पालना गरौं। सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गरौं। घटना घटे 35 दिन भित्रमा निशुल्क रूप में व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौं। समयमा नै कर तिरौं। नागरिक कर्तव्य को पालना गरौं। समुदाय सफा राखौं। सभ्य नागरिक को परिचय दिऊं। महाशिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका को कार्यालय बालाकोट पर्वत।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीवन
1: तर कागज के झिलकाई फिर पर्सनल नंबर ब्लॉक लाइए पर्सनल मोबाइल नंबर मे उन्नी टेलीकमर बाई अफिस तरी आई ब्लॉक लाई खाई अंगरी बैंकरी चार तले लग पर्दी चंगल पति न आप मोबाइल नंबर फिर दिया बदे ब्लॉक पाई विषय आप बैंक दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आप बैंक खाते न जानकारी अरुण योरी थनी प्रज्ञा सचेत तल परिम सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगी न
2: सिद्धार्थ बैंक क्या जनहितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव
2: क्यों दे एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो ही माध्यम क्या रे न्यो दे प्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठग दिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो दे प्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क तना ठज रेख्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्या जनहितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिदाई
1: समीच चौदह क्या मैं बोधे लोटी पढ़ी रो बैंक ने विवरण पी विषय मुई खाता लिखे हमरो खाई खाई बहु कोई लोटरी बढ़ दिल
2: आगे समीच लोटरी पढ़ती हूँ छाता ही गुदी
1: बढ़ दी आप बढ़ लोटरी खाली पढ़ दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिल खबर बनी वित्तीय संस्था एक पासवर्ड पिन खाई मई आ रही सुनिए बैंक आप ही बनी आ रही
2: सिद्धार्थ बैंक क्या जनहितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
1: सामाजिक सञ्जाल जी छानले दाजीमरी बुझीमरी बैंक आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिंक खुल्दियो भन्दा उइसो सु खन क्या खलो सुजी बिमिलो खन यामो बिमारी छानले खना दे खुल्दी वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आछेवा घटना तल आफै लागि समय समय री आफै न पासपोर्ट फेर दिल परिम तारी शंख लैदी विषा बैंगरी यही मरी तुरंत खबर लना
3: सतर्क तन ठगी तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैंक क्या जनहितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
4: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: Media Extreme Energy Drink.
1: निकट माता दीदी बहिनी, निकट माता दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी।

0: को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जियौ
1: निकट मा दीदी बहिनी विकट मा दीदी बहिनी यो रेडियो दीदी बहिनी 95 थोपलो